गरीब होके भी महंगी शराब तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना तो मुस्कुरा क्या गम है जिसको छुपा रहे, क्या गम है जिसको छुपा रहे, तुम इतना तो मुस्कुरा।